0: यार मैं नवाज यहाँ पे महा है ने कहीं से ये सटे मुले लुआ तू इना वारा मुझे तो हिंग वाले उठी गया थो आनी वो तपन का वो थे का पहें अठुन तो निरी में ला पहें अपाया के ना ले पगी अटे मुले ला हिंग खुमा वो मुसुरु खुया रों वाय तुम्हें लनी कुसी ऐसे सराई पगिया मसिवा मुन्नी वा निको निरे से जोरा वो सी सुरे ने जोरना नंतेना नेशनल
1: Transmitir o Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.